0: ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਫੋਟੋਜ਼ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਚੇਂਜਸ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਆਈ ਵੈਬ ਗਾਇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 403-400-0203-403-400-0203 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ www.iwebguy.ca
1: एयरड्री अब आपकी फैमिली की सेहत को मिल गया है एक नया घर
2: पेश है लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक जहां बेहतर देखभाल आपके बिल्कुल करीब है
1: मिलिए डॉक्टर मगर शाह और डॉक्टर समरीन रहमान से
2: हमारे तजुर्बाकार डॉक्टर्स आपको देते हैं मुकम्मल केयर
1: खवातीन की सेहत से लेकर बच्चों की देखभाल और रूटीन चेकअप तक इंग्लिश हिंदी और उर्दू में कंसल्टेशन दस्तियाब है
2: नए पेशेंट्स का खैर मकदम है और वॉक इन सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुले हैं
1: आज ही विजिट करें किंग्स व्यू बुलेवर्ड पर या कॉल करें 587-6890-6890 लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक
2: आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी
3: नमस्ते सत श्री अकाल आदाब लिसनिंग टू कैलगरीज मोस्ट पॉपुलर रेडियो रेडियो सबरा 94.7 एफएम
4: टेक योर बिजनेस बियॉन्ड वॉल्स एंड स्ट्रेट टू योर ऑडियंस Sabrong Radio now comes live to your location, bringing energy, excitement, and real-time engagement. From store openings to specials, from product launches to community celebrations, we don't just promote your business, we create an experience your customers remember. Our team reaches your...

0: फिर नहीं मिल होना दो दिन।
1: ओहो रह गए ना फिर पिछे। मैं सुनया है सोनिक इंश्योरेंस दे मानस पहुजा अते रमन वड़ैच ते उना दी टीम इंश्योरेंस कंफर्मेशन बहुत जल्दी प्रोवाइड करवा दंदी है ते ओता पोर्टल भी सेट कर दंदे ने ताकि तुसी आप ही कंफर्मेशन दे सको बशर्ते तुहाडी इंश्योरेंस एक्टिव है। तुसी आज ही उना नू फोन करो ते जल्दी तो जल्दी गल करके कोई हल लब्भो ताकि अगली बारी तुसी कार टाइम ते आ सको ते बच्चा नाल टाइम भी स्पेंड कर सको। फोन नंबर है मानस पहुजा 5878321208 या रमन वड़ैच 7807530001 सोनिक इंश्योरेंस।
2: हेलो गोपी शुक्र है तू फोन चुक लिया जिद्दण दा नवा कर लिया सज्जन मित्र फोन चुकनो भी गए।
3: ओ सारे डरदे नहीं चकदे उनां नूं लगदा तू मूविंग ली कहूंगा कौन इन्ने भारे समान नूं हाथ पावे।
2: ओ नहीं भरावा मैं इंज नहीं करदा आपां ते हर वार स्टार मूविंग वालियां नूं एक फोन करीदा ओ बहुत वधिया तरीके नाल सारे घर दा समान सही सलामत बिना किसी झंझट दे मूव कर जांदे आ।
4: अपने घर जां ऑफिस दा समान मूव कराउणा होवे तां स्टार मूविंग दे मलकीत सिंह जी नूं अज ही कॉल करो 4038701790 403-870-1790 स्टार मूविंग।
2: ब्रेक तो बाद फिर स्वागत है जी त्याओ खबरां वल हुण जरा होर ध्यान करदे हां जी। कनेडा दी सियासत दे विच की चल रहा है इस दी सब तो जिहड़ी अहम खबर ओह इह है कि लिबरल पार्टी ने तीन बाई इलैक्शन जिन्हां ते फैडरल सीटां ते हो रहे सी उह तिन्ने सीटां जित रही ने। सो इस जित दा मतलब इह है कि लिबरल जिहड़े ने मेजोरिटी दे विच ने ते आउण वाले महीनियां दे विच 6 होर बाई इलैक्शन होण वालियां ने। यूएसए दे नाल चल रही ट्रेड वार दे चलदिआं ये जिहड़ियां बाई इलैक्शन सी बहुत इंपोर्टेंट सी मार्क कारनी दी सरकार लई ते इस वेले जो ये जिहड़ी ये है जी लिबरल्स ने तीन सीटां जित्तियां ते दूसरी बाई इलैक्शन दी हैट्रिक कह सकदे हां इस तों पहलां भी तीन सीटां जित्तियां सी। टोरंटो दी बीचेस ईस्ट यॉर्क दे विच तनवीर शाहनवाज ये जिते ने जी ते ब्रिटिश कोलंबिया दे विच ब्रिडन कैली ने नॉर्थ वैनकूवर कैपलैनो दे विच सीट जीती है। ये दोवें सीटां लिबरल दियां ही मनिया जांदियां सी ते ये जिहड़ियां इस वेले है जी ये विच एक सीट क्यूबिक दे विच जीती है ते आउण वाले महीनियां दे विच 6 होर बाई इलैक्शन होणियां ने ते लिबरल्स लई इन्हां ने उम्मीद जिहड़ी लाई सी जिहड़ी बीचिज ईस्ट यॉर्क दे विच वोटां भावें उन्हां दीआं घटियां ने 2025 दे विच पर नॉर्थ वैनकूवर दे विच उन्हां ने बहुत वधिया सीटां हासिल कीतियां ने। सो मार्क कारनी होणां ने ये जित दी वधाई दित्ती है। क्यूबिक दे विच जिहड़ा है लिबरल्स ने सीट जीती है। सो ये सीटा तो बाद जिहड़ियां अगलियां कुछ हैगियां ने जी बाई इलैक्शन उन्हां दे विच जो स्टीवन गिलबिल जो कि मिनिस्टर दे अहुदे तों रिजाइन कर गए सी ते बाद विच उन्हां ने हुण ऐलान कर दिता है कि अपनी मैंबर पार्लीमेंट की राइडिंग भी छड रहे ने। सो उन्हां वल्लों भी ऐलान किया गया कि वह सीट छड रहे ने ते होर बाई इलैक्शन जिहड़ी है कनेडा दे विच होवेगी ते लगदा इस तरह है कि जिस तरह ताज़ा स्थिति है ते जिस तरह लिबरल पार्टी दे नंबर जिहड़े ने ठीक ठाक ने उस दे चलदिआं लिबरल पार्टी जिहड़ी है मेजोरिटी विच बनी रहेगी। इस तों अलावा अलबर्टा दे विच ये मन्या जा रहा है कि इलैक्शनज अलबर्टा वाले जिहड़े ने जी अक्तूबर दे विच होण वाले रेफरेंडम वास्ते मेल इन बैलेट जिहड़े ने भेजने शुरू कर रहे ने। स्पैशल मेल इन बैलेट हैगे ने 10 क्वेश्चन रेफरेंडम है अगले महीने शुरू होना ते इस 10 सवालों दे विच ज़्यादा करके ध्यान जिहड़ा है वह सैपरेशन दे मुद्दे ते है लेकिन इमीग्रेशन नाल मतलब भी सवाल हैगे ने। सो इलैक्शनस अलबर्टा वालों कोशिश करके उन्होंने कहा कि अक्तूबर 9 तक मेल इन बैलेट जिहड़ा है वह मंगया जा सकता है ते बैलेट जिहड़ा